एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे राजेश जोहरी रचित गणेश वंदना। लीजिए अब सुनिए अगली भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे चंद्र सखी रचित भक्ति रचना, स्वर पीयूषा कैलाश अनुज का। इसी के साथ आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आस्था के स्वर कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
1: इक्कीसवीं शताब्दी के सभ्य समाज में हो रही हिंसा गहन चिंता का विषय है। विकास के चरम पर पहुंची सभ्यता के युग में आदिकालीन मानव की बर्बरता और पाशविकता निंदनीय है। देश में थोड़ी सी शांति के बाद अचानक हिंसा की बाढ़ आ जाती है। दो अच्छे दोस्त अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। मानवता की सारी हदें लांघ कर एक दूसरे को नारकी यातनाएं पहुंचाने को सहर्ष तैयार मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सी परिस्थितियाँ मानव मस्तिष्क को संवेदना शून्य कर जाती हैं? परिस्थितियों के विश्लेषण का दौर शुरू होता है और एक उपेक्षित सा शब्द अनायास महत्वपूर्ण हो जाता है, और वह शब्द है अहिंसा। दरअसल सामान्य स्थितियों में इसे मानवीय मूल्यों की सूची में स्थान मात्र प्राप्त है। आचरण में इसकी प्रबलता पर हम शायद ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। अहिंसा की बात तभी उठती है जब कहीं हिंसा होती है। हिंसा के व्यापक अर्थ को भी हमने संकुचित दायरे में रखा हुआ है और आवश्यकता अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर परिभाषित करते रहते हैं। अहिंसक होना एक प्रवृत्ति है, आचरण है। यदि व्यक्ति में यह भावना विकसित कर दी जाए तो सर्वत्र शांति व्याप्त होगी। अहिंसा शब्द के साथ ही हमें महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि याद आते हैं। उनकी सीख और उपदेशों से समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है। क्रियाशील रूप में यह सभी जीवधारियों के

0: अच्छी भावना है, प्रेम है, मानव मात्र का एक दूसरे का सम्मान करना, किसी को कष्ट न देना, किसी के प्रति दुर्भावना न रखना, यह भी एक अहिंसा है। अहिंसक आचरण के विकास के लिए कुछ घटक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावशाली हैं। ये तत्व हैं, पहला सत्य। सत्य और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग करना प्रायः असंभव है। दूसरा है निर्भयता। निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, अर्थात कष्ट सहने हेतु तैयार रहना। तीसरा तत्व है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य बल का दृढ़ अवलंबन। इसके अनुसार विरोधी को कष्ट न देकर धैर्य और सहानुभूति के साथ उसे गलत मार्ग से हटाना। जब प्रत्येक हृदय में ये भावनाएं बलवती हो जाती हैं तो समस्त समाज अहिंसक आचरण करेगा। सद्भावना के विकास से ही हिंसा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बाल्यावस्था से ही प्रयास किए जाने होंगे। राष्ट्र को हिंसा मुक्त बनाने के लिए वर्तमान में अहिंसा का बीज रोपना होगा, ताकि कालांतर में यह पल्लवित और पुष्पित हो सके। नवराष्ट्र के निर्माण हेतु हमें सामूहिक रूप से संकल्पित होना होगा। हमारे द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा आत्मबल, हमारी प्रदीप्त चेतना भविष्य में समाज के ऊर्जायुक्त होनहारों की अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने हेतु एक अच्छा, सुखद, अहिंसक वातावरण प्रदान करेगी।
1: अहिंसा, ये था आज का चिंतन। आलेख निधि गंगेले का, स्वर उमेश कुलकर्णी का।

0: बनी तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:35 होने को हैं। अब सुनिए श्रीराम चरित मानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी

ही हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का।
1: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा।
2: किसान भाई बहनों राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे कपास की खेती। भाई बहनों कपास निमाड़ क्षेत्र की एक मुख्य फसल छे। कपास जेका हम सफेद सोनो कमाएं यह हमारा देश की अर्थव्यवस्था न हमारा किसान भाई न का लेन बहुत महत्व रखे। कपास की खेती का लेन सही जलवायु न मिट्टी को चुनाव करनू बहुत जरूरी रहे या गर्म न धूप वाली जलवायु पसंद करे। एमा कम से कम 180 दिन पाला नहीं पड़नू चाहिए। काली न अच्छी जल निकास वाली मिट्टी कपास की खेती का लेन सबसे उपयुक्त तो मानी जाए। 10 मई से 15 जून तक को समय कपास की बोनी का लेन उपयुक्त समय मानी जाए। पर हम देखी राज कि कुछ समय से मौसम में अनियमितता आई गई। एकालेन मौसम की स्थिति का देखते हुए मौसम का हिसाब से बोनी करनी चाहिए। बोनी का लेन पहले खेत का तैयार करना पड़े। मिट्टी कड़क रहे तो ओख पानी दई न नरम करने का बाद कल्टीवेटर करनू न फिर रोटावेटर चले न मिट्टी का भुरभुरी न समतल करनू पड़े न फिर

लांगी बनाई न ओम कपास लगाई जाए। बीज से बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट न चौड़ाई 4 से 4.5 फीट रखनो चाहिए। लांगी में बीज रखना का बाद दवा पेंडा मेथालिन डाली जाए, एम पानी साथ में डाली देनु चाहिए। 4-5 दिन का बाद बीज नमा अंकुरण हुई जाए। बोनी का समय खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं रहती। बस पेंडा मेथालिन दवा 70 ml प्रति पंप का हिसाब से डालनी चाहिए। निमार क्षेत्र कालीन कपास की उन्नत किस्म न 659 सुपर कार्ट, बैंक कार्ट, आशा वन, एक्स कपास, धनदेव न बीटी कपास, एक अलावा भी अरु बहुत सी किस्म न छे। तो अपनी खेत की मिट्टी का हिसाब से किस्म को चयन करनी चाहिए। कपास कालीन वसी

0: 70 ml प्रति पंप का हिसाब से डालनी चाहिए। निमार क्षेत्रकालीन कपास की उन्नत किस्म न 659 सुपर काट, बैंक काट, आशावन, एक्स कपास, धनदेव न बीटी कपास। एक अलावा भी अरु बहुत से किस्म न छे, तो अपनी खेत की मिट्टी का हिसाब से किस्म को चयन करनी चाहिए। कपास कालीन वसी तो भारी जमीन ज्यादा उपयुक्त रहे, पर हल्की जमीन में भी कपास लगाई सकाए। सिंचाई कालीन पानी लांगी पद्धति से दी जाए या फिर लाइन से पाइप से भी पानी हम दे सकें। बुआई का बाद 3-4 दिन तक तो रोज पानी देना चाहिए, न फिर अंकुरण का बाद 2 दिन का अंतराल से सिंचाई करना चाहिए। फार्मेंडोन यदि आप बीटी कपास लगाना चाहो तो वो भी इना समय में लगाया जाए। बीटी कपास सबसे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि यह कीटनाशक प्रति अधिक प्रतिरोधी है, जिससे किसान भाई का कीट नियंत्रण में मदद मिले। खेत की तैयारी न पोषण प्रबंधन कपास की फसल का लेन बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का लेन सही मात्रा में खाद न उर्वरक न को प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कपास में महुआ, व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर, फंगस, थ्रिप्स को प्रकोप हो तो एक नियंत्रण का लेन मोनोक्रोटोफास 50 ml प्रति पंप की दर से डाली जाए। एक अलावा क्लोरोपायरीफास थायोमेथॉक्साम दवा को उपयोग कर भी हम नियंत्रण एक पर कर सकें। कीट का प्रकोप का अलावा कपास में ब्लाइट रोग लगज न फंगस का कारण पीलो बन भी आई जाए, जेम पत्ता जो है वो पीला पड़ी जाए। कभी कभी माइट्स न थ्रिप्स को अटैक यदि ज्यादा हो तो कपास लाल पड़ी जाए। कपास की फसल 2 से 2.5 महीना में यानी कि 65 से 70 दिन का बाद हमका मिलनू चालू ही जाए। शुरू में न आखिरी में 1-2 तुराई हमका हल्की मिले, लेकिन 3 तुराई हमका अच्छी मिली जाए। यदि हम लागत की बात करें तो कपास की खेती में कुल लागत औसतन 20,000 रुपया प्रति एकड़ का हिसाब से लगी जाए। न उत्पादन हमको 7 क्विंटल से लेने न 11 या 12 क्विंटल प्रति एकड़ मिली जाए। कपास की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी रहे कि हम एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक न को उपयोग करा, जेमें जैविक न रासायनिक दोनों तरह का उपाय शामिल रहे। रोग न का बचाव का लेन उचित समय पर दवा को प्रयोग करनु बहुत जरूरी रहे। जब कपास का गोला पूरी तरह से खिली जाए न कपास बाहर दिखने लगे तब इनकी कटाई करी जाए। अच्छी पैदावार का लेन सही समय पर कटाई न कटाई का बाद कपास का ठीक से सुखानू बहुत जरूरी छे। पैबेनहोन मौसम में निर्भरता, कीमत में उतार चढ़ाव न पानी की कमी का कारण कपास की फसल में बहुत सी चुनौती ने छे, लेकिन सही देखभाल न सही किस्म का चयन करने से हम कपास की खेती से भी अच्छो आर्थिक लाभ ले सकें। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। राम राम।
1: कपास की खेती, इस विषय पर अभी आपने सुनी कृषि चर्चा, स्वर तरुणा शुक्ला का। ये आकाशवाणी खंडवा है, अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के तहत सुनिए डिजिटल फोटोग्राफी पर आनंद जोशी से आयशा मंसूरी की बातचीत। सात बजकर 20 मिनट में पर विविधा में आज सुनिएगा कवि सत्यनारायण चौहान से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर केंद्रित काव्य रचनाएं। सुनहरे पल ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर।

सुबह 9 बजे रिले किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सुनिए प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। 10:35 पर होगा फरमाइशी निमाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी और 11 बजे से रिले किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

8:15 पर सुनिए सुगम संगीत और 8:30 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।

आज शाम 5:30 पर सुनिए निमाड़ी लोकगीत, 6 कार्यक्रम युववाणी। आज युववाणी में आकर्षण क्रम है हमारे शहर। 6:30 पर लुत्फ लें फिल्म संगीत का और 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

रात 8 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होगा। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NST आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण।

रात 8:35 से रात 11 तक रिले किए जाएंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, और इसी बीच आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी स्पॉटलाइट 9:15 पर।

0: श्रोताओं, आपको एक बार पुनः बता दें, आज सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे डिजिटल फोटोग्राफी पर आनंद जोशी से आयशा मंसूरी की बातचीत, और 7:20 पर विविधा में सुनिएगा कवि सत्यनारायण चौहान से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर केंद्रित काव्य रचनाएं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: आज की ताजा खबर।
0: अब सुनिए आज की ताजा खबर।

केंद्र सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के तहत किए गए जल संरक्षण के कार्यों के आधार पर प्राथमिक रैंकिंग जारी की गई है, जिसके तहत खंडवा जिला पश्चिमी जोन में सेकंड और देश में 5वें स्थान पर है। इसी तरह निकायों में नगर निगम खंडवा देश में 2रे स्थान पर रहा। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में ब्रोंकोस्कोपी मशीन से केवल 500 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर अब सामान्य मरीजों की जांच होगी। रोगी कल्याण समिति की बैठक में जांच के शुल्क का अनुमोदन किया जाएगा।

के पावन जल में स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और स्थानीय संस्थाओं के लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून माह को मलेरिया माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। खबर खेल जगत की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर बैक टू बैक खिताब अपने नाम कर लिया। खबर मौसम की। शहर में सोमवार शाम करीब 5 बजे धूल भरी आंधी चली। इस दौरान हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एक दर्जन से ज्यादा पेड़ विभिन्न स्थानों पर गिरने से शहर में कई क्षेत्रों पर बिजली बंद रही। कल शहर का दिन का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार संकलन शहबाज उस्मानी का।

0: आज की ताजा खबर।
1: एफएम बैंड 1.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज सुनिए डिजिटल फोटोग्राफी विषय पर खंडवा के आनंद जोशी से आयशा मंसूरी की बातचीत। तो लीजिए सुनिए ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं फोटोग्राफी से जुड़े हुए आनंद जोशी जी। आइए आपसे बातचीत करते हैं और जानते हैं डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में। जोशी जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। बंधुओं, डिजिटल फोटोग्राफी क्या है इसको जानने के लिए सर्वप्रथम फोटोग्राफी का प्राथमिक ज्ञान अति आवश्यक है। फोटोग्राफी में सबसे बड़ा स्थान प्रकाश को कितनी मात्रा में इमेज पर देना है, इसके लिए क्या एपर्चर होना चाहिए, क्या शटर स्पीड होना चाहिए, कौन सा समय एक इमेज के लिए सर्वोत्तम होगा, इसका ज्ञान अति आवश्यक है। समय की बात करें, सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय बहुत उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय गोल्डन लाइट रहता है और गोल्डन लाइट के समय हमें फोटोग्राफी के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा एक मॉडर्न स्टूडियो पर अम्ब्रेला लाइट लगे होते हैं। जब भी हम प्राकृतिक रूप से कोई फोटोग्राफी करेंगे तो उसमें अम्ब्रेला लाइट मिलेगा। अम्ब्रेला लाइट का मतलब ये होता है कि घनी बदली छाई हुई है, उस समय सिल्वर लाइट रहता है। तो डिजिटल फोटोग्राफी में गोल्डन लाइट और सिल्वर लाइट, इन दोनों का बहुत महत्व है।
1: फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी में क्या अंतर होता है?
2: नॉर्मल फोटोग्राफी जो होती थी, इसमें एक सीमित साधन थे। उस समय फोटो रोल हुआ करते थे, उसमें एक सीमित मात्रा में हम फोटोग्राफ खींच सकते थे। लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी में चिप आ गई है, पेन ड्राइव आ गई है, इसके माध्यम से हम असीमित मात्रा में फोटोग्राफ खींच सकते हैं। किसी फोटोग्राफ को खींचते हैं, यदि वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। डिजिटल

0: युग में डिजिटल फोटोग्राफी की क्या भूमिका है?
1: डिजिटल फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फोटो डिटेक्टर्स वाले कैमरे का प्रयोग लेंस द्वारा निर्दिष्ट की गई वस्तु के लिए होता है। हम फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफी फिल्म पर किसी भी वस्तु की अनावृत्ति को एकदम उससे भिन्न होती है। ये इसके द्वारा खींची गई फोटो को डिजिटल फॉर्म में किसी भी कंप्यूटर फाइल में रखा जा सकता है। इस फाइल का उपयोग हम डिजिटल प्रोसेसिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, फोटो को देखने अथवा प्रिंट आउट निकालने के लिए कर सकते हैं।
0: जैसे अभी आपने बताया कि इसकी बहुत ही अधिक भूमिका है, तो इस दौर में किसी भी फील्ड में यदि हम देखें तो डिजिटलाइजेशन बहुत कॉमन चीज होती जा रही है, तो हम इसमें इनका उपयोग किस तरह से करते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आशा जी आपने। डिजिटल युग में विकास के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान डिजिटल फोटोग्राफी ने दिया है। मेडिकल के क्षेत्र में यदि हम कहें तो जैसे सोनोग्राफी है, पैथोलॉजी है, या फिर ऑपरेशन यदि हमारा हो रहा है तो सेंसर के माध्यम से सारी वीडियोग्राफी हो जाती है। आजकल सारा कार्य डिजिटल हो गया है, चाहे
0: जी
1: वो बैंकिंग हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, शिक्षा का
0: जी
1: क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एडवेंचर हो, सैटेलाइट हो, यहां तक कि खेलकूद में भी आप देखिए कि DRS लिया जाता है। यदि मान लो खेल के अंदर कोई एम्पायर गलत डिसीजन दे रहा है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप DRS के माध्यम से उसका रिवर्स,
0: व्यू देख सकते हैं।
1: हाँ, वो पूरा व्यू देख सकते हैं
0: जी
1: आप,
0: जी बिल्कुल
1: और उस व्यू से आपको तुरंत परिणाम मिलता है।
0: जी। इस विधा को हम किस तरह से सीख सकते हैं?
1: फोटोग्राफी का 2 साल का डिप्लोमा होता है
0: अच्छा
1: तो उसके माध्यम से हम इसे सीख सकते हैं और इसमें रोजगार के भी अवसर काफी ज्यादा मात्रा में हैं।
0: तो इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की जरूरत होती होगी, या कोई भी पर्सन जाकर इसे सीख सकता है, डिप्लोमा कर सकता है? अच्छा
1: इसमें ग्रेजुएशन सबसे पहले जरूरी है। फिलहाल कोई भी सब्जेक्ट का व्यक्ति इसे कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए आजकल कई प्रकार के ऐप्स आ गए हैं। मॉडलिंग की फोटोग्राफी यदि आप कर रहे हैं, किसी इवेंट्स की आप यदि फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो ऐप्स आपको खुद ब खुद जानकारी देगा। फोटोग्राफी आज के युग में बहुत सरल माध्यम हो गया है।
0: आपने जिस तरह से बताया कि हम इसके लिए डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और इसे ऐप के माध्यम से भी सीख सकते हैं, तो इसमें करियर बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये
1: जैसे
0: हमारे युवा साथियों के लिए ये एक अच्छी फील्ड हो सकती है, यदि वो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो वो जानकारी प्राप्त कर डिप्लोमा कोर्स कर लें, या फिर अलग अलग ऐप के माध्यम से अलग अलग फील्ड में फोटोग्राफी सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं मैडम,
0: अब
1: आप
0: हम आपसे
1: बताइए।
0: जानना चाहेंगे कि डिजिटलाइजेशन इसकी क्या कुछ दुष्परिणाम भी हैं?
1: दुष्परिणाम यह है कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति को हम पासवर्ड, OTP, या फिर हम बिना देखे किसी भी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। शासन द्वारा साइबर क्राइम के थाने खुल गए हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें यह चेक करना है कि किसी भी अननोन व्यक्ति का फोन नहीं उठाना है, किसी भी अननोन व्यक्ति को अपना OTP नहीं शेयर करना है, और अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी ID हैक हो
0: जी
1: जाएगी,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: जब हैक हो गई तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप दिवालिया भी हो सकते हैं आर्थिक रूप से, आपके परिवार की पूरी जानकारी उनके पास जा सकती है, आपके
0: जी।
1: बैंक संबंधी जानकारी उनके पास जा सकती है।
0: तो इसके
1: बिल्कुल,
0: निदान के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं?
1: आधुनिक तौर पर इसके ऐप आए हुए हैं। आपको गवर्नमेंट वो ऐप भेज रही है, उनको आपको लोड करना पड़ेगा, और फिर वो जो कहते हैं उस ऐप के अंदर कि आप इन चीजों को लॉक्ड करिए, तो उस चीज को आप यदि लॉक कर देंगे तो आपके आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर क्राइम नहीं होगा।
0: चलिए, ये तो बात हुई डिजिटलाइजेशन के दुष्परिणाम और उसके निदान की। अब हम वापस आते हैं हमारी डिजिटल फोटोग्राफी पर, और आपसे एक शॉर्टली फॉर्म में जानना चाहते हैं कि इसका उपयोग किस किस तरह से किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे युवाओं को करियर के क्या नए दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, करियर बनाने के लिए इसमें रोजगार के चांसेस उनके लिए बहुत है। चाहे आप वाणिज्यिक विज्ञापन देखिए,
0: जी
1: कंपनियों के बॉन्ड्स और उनके उत्पादकों की

0: डिजिटल फोटो खींचकर विज्ञापन करना, फैशन, ग्लैमर, मॉडल्स, डिजाइनर्स और फैशन पत्रिकाओं के लिए फोटोग्राफी में और रोजगार के अवसर असीमित मात्रा में हैं। जैसे हम वेडिंग इवेंट्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ ट्रेवल की बात करें,
1: जी,
0: पत्रकारिता की बात करें, फोटो जर्नलिज्म की बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो यदि हम इसको शॉर्टली में कहना चाहें तो डिजिटल फोटोग्राफी एक करियर के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसके बारे में आपने अभी हमको बताया कि हम इसे डिप्लोमा भी कर सकते हैं और अलग अलग ऐप के माध्यम से इसे सीख भी सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे आज हर किसी पर्सन के हाथ में स्मार्टफोन है, इनमें बहुत अच्छी पिक्सल क्वालिटीज होती है, हर एक पर्सन फोटो आसानी से खींच सकता है, तो क्या फर्क है सीखने में और एक नौसिखिए का तरह से फोटो खींचने में?
0: फोटोग्राफी का प्राथमिक नॉलेज यदि आपको होगा, जैसे आमतौर पर जब फोटोग्राफर किसी ग्रुप का फोटो खींचता है
1: जी
0: तो उसमें सेंटर में जो व्यक्ति खड़ा है, मतलब उसको कर्व में खड़ा करता है फोटोग्राफर चंद्राकार,
1: जी जी
0: और वो सेंटर के व्यक्ति को फोकस करेगा तो उसका ओवरऑल फोटोग्राफ फोकस में आएगा, भले ही वो ऑटो फोकस पे चला रहा हो,
1: अच्छा
0: लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए।
1: जी, बिल्कुल
0: हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मोबाइल के द्वारा फोटोग्राफी को कर सकते हैं,
1: जी, बिल्कुल
0: लेकिन आपका बौद्धिक स्तर कितना है इसको समझने का,
1: जी
0: इस पे डिपेंड करता है।
1: जी
0: ये एक अंतर है, और वरना तो डिजिटल फोटोग्राफी एक अथाह समुद्र की समान है, आप इसका जितना सीखोगे उतना कम है। मेरे श्रोता बंधुओं को यही कहूंगा कि आप जब भी डिजिटल फोटोग्राफी करें एक चीज का ध्यान रखें,
1: जी
0: सामने यदि व्यक्ति कोई खड़ा है तो उसकी पीठ के पीछे सूर्य का लाइट या फ्लैश लाइट नहीं होना चाहिए, वो अगेंस्ट हो जाएगा
1: जी बिल्कुल
0: और आपका फोटोग्राफ धुंधला हो जाएगा। अब
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसमें डिजिटल फोटोग्राफी कर रहे हो या नॉर्मल फोटोग्राफी,
1: जी जी बहुत ही
0: आज
1: अच्छी जानकारी दी आपने। इन सब से हमारे साथियों को अपने करियर के लिए एक ऑप्शन सुझाया है आपने कि वो इस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। आपसे ये
0: बिल्कुल
1: जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल फोटोग्राफी। इस विषय पर आनंद जोशी से आयशा मंसूरी की बातचीत। विशेष कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी खंडवा है। अब वक्त है समाचारों का।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक

0: पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी नाले तालाब पोखर कुएं बावड़ी जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनी सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल इंदौर देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी बुरहानपुर खंडवा हरदा बैतूल छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी गरज चमक बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है।

की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है, जबकि दो खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स एम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विविधा। आज विविधा में सुनिए कवि सत्यनारायण चौहान जी की काव्य रचनाएं, जो प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत है। श्रोताओं, एक दुखद खबर। सत्यनारायण चौहान जी गत शुक्रवार 22 मई 2026 को ये रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो में करके गए और मंगलवार 26 मई 2026 को उनका हृदयाघात के कारण निधन हो गया। आज आकाशवाणी खंडवा उनकी इस अंतिम रिकॉर्डिंग का प्रथम प्रसारण कर रहा है। तो सुनिए ये काव्य रचनाएं।
2: मैं सत्यनारायण चौहान आकाशवाणी परिवार के माध्यम से अपनी चाहत से सजी काव्यधारा के पुष्प समर्पित कर रहा हूँ, जिसका पहला शीर्षक है पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा ऐसी हो सुप्रभात। भैया और बहना तुम सुनो मेरी बात, भैया और बहना तुम सुनो मेरी बात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा ऐसी हो सुप्रभात, ऐसी हो सुप्रभात। प्रकृति की गोद में हम आनंद से रहते हैं, प्रकृति की गोद में हम आनंद से रहते हैं, फिर न जाने क्यों ऐसे कार्य करते हैं, फिर न जाने क्यों ऐसे कार्य करते हैं। विषैली चीज़ों से कर देते हैं पर्यावरण पर आघात, विषैली चीज़ों से कर देते हैं पर्यावरण पर आघात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा ऐसी हो सु

प्रभात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। नदियाँ जिन्हें हम सब माता कहकर बुलाते हैं, नदियाँ जिन्हें हम माता कहकर बुलाते हैं, फिर न जाने क्यों उसमें ही कचरा बहाते हैं, फिर न जाने क्यों उसमें ही कचरा बहाते हैं। पीने का पानी मिले फसल का हो रोपण, पीने का पानी मिले फसल का हो रोपण, नदियों को रखें स्वच्छ खूब करें वृक्षारोपण, नदियों को रखें स्वच्छ खूब करें वृक्षारोपण। हरी भरी ही रहे यह सारी कायनात, हरी भरी ही रहे यह सारी कायनात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पशु पक्षी वन्य जीवों पर हम सदा दया करें, पशु पक्षी वन्य जीवों पर हम सदा दया करें, विनम्रता का भाव लिए हम सदा रहा करें, विनम्रता का भाव लिए हम सदा रहा करें। ईर्ष्या द्वेष घृणा को हम हमेशा ना करें, ईर्ष्या द्वेष घृणा को हम हमेशा ना करें, घर आंगन की दहलीज पर हरियाली ही सजा करें, घर आंगन की दहलीज पर हरियाली ही सजा करे। अल्प विकल्प संकल्प सत्य की हो बात, अल्प विकल्प संकल्प सत्य की हो बात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण वह आवरण है जिसमें हम सुरक्षित हैं, पर्यावरण वह आवरण है जिसमें हम सुरक्षित हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ऐसी शिक्षा लक्षित है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ऐसी शिक्षा लक्षित है। पेड़ों की लड़ियों को हमको ऐसी सजाना है, पेड़ों की लड़ियों को हमको ऐसी सजाना है, हर बूंद पानी की अमृत है हमें इसे बचाना है, हर बूंद पानी की अमृत है हमें इसे बचाना है। दिन रहे प्रसन्न सुखदाई होगी हमारी रात, दिन रहे प्रसन्न सुखदाई होगी हमारी रात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। प्रकृति से ऊर्जा मिले हर मानव मात्र को, प्रकृति से ऊर्जा मिले हर मानव मात्र को, प्रकृति से मौसम फूल पत्ती महकाए कायनात को, प्रकृति से मौसम फूल पत्ती महकाए कायनात को। प्रकृति वंदन है प्रकृति चंदन है, प्रकृति वंदन है प्रकृति चंदन है, प्रकृति से हीरे मोती मिल जाते खैरात, प्रकृति से ही मिल जाते हैं हीरे मोती खैरात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। एक नहीं दो नहीं हर चार को कहेंगे, एक नहीं दो नहीं हर चार को कहेंगे, एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे, एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। समाज में जा जा कर यह अभियान छेड़ेंगे, समाज में जा जा कर यह अभियान छेड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यही कहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर यही कहेंगे। पर्यावरण को बचाना ही होगी मुद्दे की बात, पर्यावरण को बचाना ही होगी मुद्दे की बात, पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। पर्यावरण रहे शुद्ध हमेशा, ऐसी हो सुप्रभात। मेरी रचना का दूसरा शीर्षक है विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। घर घर गांव गांव मंजर यह बनाएं, घर घर गांव गांव मंजर यह बनाएं, अपनी वसुंधरा को प्रदूषण से बचाएं, अपनी वसुंधरा को प्रदूषण से बचाएं। कहकर नहीं यह कर कर दिखाएं, कहकर नहीं यह कर कर दिखाएं, आओ ले यह संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, पेड़ पौधे लगाओ तो गगन शुद्ध होगा, पेड़ पौधे लगाओ तो गगन शुद्ध होगा। समरसता का भाव देखो सबको पिला दो, समरसता का भाव देखो सबको पिला दो, आपस में अहंकार का युद्ध न कभी होगा, आपस में अहंकार का युद्ध न कभी होगा।

0: खुद जागें और दूसरों को भी जगाएं, खुद जागें और दूसरों को भी जगाएं, आओ ले ये संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, आओ ले ये संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। नदियों की बहती यहाँ पावन अमृत धारा, नदियों की बहती यहाँ पावन अमृत धारा, खेतों में लहलाती फसल घरों में हो उजियारा, खेतों में लहलाती फसल घरों में हो उजियारा। एक पेड़ में भी लगाऊंगा, एक पेड़ में भी लगाऊंगा, यही चारों तरफ से आवाज़ आए, आओ ले ये संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। पर्वत पठार मैदान सबको हम सजाएंगे, अवनी से अंबर तक करके यह दिखाएंगे। 5 जून का यह संकल्प सबको बताएं, आओ ले यह संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। हवा पानी अन्न अग्नि और आकाश मिलकर पंचतत्वों से होता शरीर का विकास। प्रदूषण से मुक्त अपना पर्यावरण बनाएं, आओ ले यह संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। गौतम गांधी की है यह धरती, हमें हिंसा से बचाना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, उपभोग से बचना होगा। पानी बना नहीं सकते, बचा तो सकते हैं, यह भी याद रखना होगा। प्लास्टिक के दैनिक अति उपयोग से हमें बचना होगा। स्वर्ग से सुंदर हो अभी आसियाना ऐसी चाहत बनाएं, आओ ले संकल्प सभी जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, जागरूकता से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। मेरी अगली रचना का शीर्षक है जल है तो कल है। पंच तत्व में जल, वसुंधरा में जल, रत्नाकर में जल, अंबर में जल, जल का बल प्रबल है, जल है तो कल है। जल की चाह किसान को, जल की चाह वीरान को, जल की चाह उद्यान को, जल की चाह जहान को। झोपड़ी हो या महल है, जल है तो कल है। जल बना नहीं सकते, बचा तो सकते हो, जल से ही हरियाली ला सकते हो। जल हो तो पठारों में अन्न उगा सकते हो, जल से भी समाज में क्रांति ला सकते हो। जल की महिमा अनंत है, जल है तो कल है। दर्द हो आँखों में पानी, खुशी हो तो आँखों में पानी। जीवन में होना जरूर पानी, पानी की ही होती मेहरबानी। माँ की ममता चाहत का जल है, जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे विविधा। आज विविधा के अंतर्गत आपने सुना कवि सत्यनारायण चौहान की काव्य रचनाओं को। ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है सुनहरे पल।

सुनहरे पल के सभी सुनने वालों को आयशा का नमस्कार। श्रोताओं, आज सुनहरे पल में बात हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, जिन्हें हम शोमैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज कपूर साहब की। आज राज कपूर साहब की पुण्यतिथि है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत।

मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में, बोल हसरत जयपुरी के और धुन शंकर जयकिशन की थी। असफल लेकिन कालजयी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर साहब की पसंदीदा फिल्म रही। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी फिल्मों के नायक, मुख्य नायक वे खुद ही होते थे। आइए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

अभी आप सुन रहे थे शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की शब्द रचना, फिल्म थी आवारा। लीजिए अब सुनिए दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना संगम फिल्म से। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत अगला गीत हम सुनते हैं श्री 420 से। श्री 420 जो कि अपने समय की सबसे अलहदा फिल्म रही, बिल्कुल नई मिजाज की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में श्री 420 से। इसी गीत के साथ आज का सुनहरे पल कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। दे आयशा को इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी सुनहरे पल कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी खंडवा है। अब समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
5: Both sides underscored the
6: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
4: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा,

0: सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है।

0: शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और

0: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
1: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
0: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
2: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
1: कितना?
2: अच्छा तो 2 करोड़।
0: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
3: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिकाऊं।
0: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुनी आशा भोसले की गाई सुगम संगीत रचनाएं। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत।

0: ये गीत।
1: आपके मेहते गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आयशा। स्वीकार करें, नमस्कार।

गुरु फिल्म से, जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। आवाज दी एआर रहमान, चिन्मय, मुर्तुजा खान और कादिर खान ने। इस गीत को सुनना चाहा भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर छिंदा सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, कुमारी अंकिता जोशी और बेबी वैदेही जोशी। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, दंतरेगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, प्रकाश इंगोले और हनुमान दास साहू ने। साथ ही सुनना चाहा जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, गुलफान, इरफान इसरार, नरगिस खातून ने। घंटाघर चौक खंडवा से पसंद आई संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना की। छोटी बरिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान और कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया आशु अहमद फुलवाले की। गुंजाला बीड़ महाराष्ट्र से नारायण देव घुगे, सुनंदा घुगे और महेश निर्मला भगवान ने भी सुना चाहा था इसी गीत को।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
2: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
1: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
3: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
2: कितना?
3: अच्छा तो 2 करोड़।
1: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
4: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिकाऊं।
1: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे पसंद किया जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने। मुंबई से विजय, लता वैष्णवी और अंजिक ने। छत्तीसगढ़ कोयलारी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र और साहिल चंद्रा।

करनी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया ने, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना ने, साथ ही सुनना चाहा आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा ने, दही गांव नांदुरा से पसंद आई हमारे पास धोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार, भारती प्रतीक्षा, कोमल समाधान भातुरकर की, नर्मदा कॉलोनी बढ़वा से पुष्पेंद्र रावल, इंदुमती निहारिका, अयांश और सोनू मोनू रावल की, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी जयश्री महतेरे, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, ओम सेन, कुमारी सपना, धर्मेंद्र सेन, मुकेश सेन, मम्मी द्वारका बाई और मनीषा बाई चौधरी की। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत दबंग फिल्म से।

फैज अनवर का लिखा एक गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खां के आवाज में दबंग फिल्म से। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत दिल से फिल्म से।

आप सुन रहे हैं दिल से फिल्म का गीत एआर रहमान की आवाज में। शब्दकार गुलजार, संगीतकार एआर रहमान। दिल से फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा राजनगर कांति निकेतन से ओल्ड लिसनर्स कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, मास्टर रुद्र गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता ने। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके ने। जिला उज्जैन से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मोड़त ने।

इसी गीत को सुनना चाहा जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल ने। घमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने। माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता कटारे, उदय और उज्ज्वल कटारे ने। बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे ने। साथ ही पसंद किया लखनऊ ऐशबाग से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, रश्मि, नीलम और शांति गुप्ता ने। लोहरी डीह छत्तीसगढ़ से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू ने। पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे और अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे ने। बोरी खुर्द तालुका जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, साक्षी ताई, जगुताई और संचित सोहम देशमुख और प्रथमेश देशमुख ने। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद ने। साथ ही पसंद किया रामगृह कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब ने। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी प्रांजल राय ने। केदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल ने। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि और ओशिका जंघेल, साथ में है अंजलि जंघेल। आप सबकी पसंद पर अभी आपने सुना दिल से फिल्म का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है रिंगनी से ममता शर्मा, मोनिका शर्मा ने। चांदनी चौक गंडई पर डरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की और रविंद्र रौनक सेन ने। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और किशोर धनाड़े, हीरामन शेंडे ने। फ्रेजर पूरा अमरावती से महेश रामटेके, ज्ञानेश्वर रामटेके और निर्मला रामटेके ने। कल्लोर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने। जिला सांगली से हनुमान शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा शिंदे ने। आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: इसी गीत को पसंद किया मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल और इनके साथियों ने। इसी के साथ आज का आपकी मीति गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। दे इजाजत, नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आपके मीति गीत कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्रक, वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण

0: में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर, इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

मणिरत्नम की पहली फिल्म कन्नड़ में थी पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे। 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम, जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल। 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा ने।

1993 में निर्मित थेरुडा थेरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने यह उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया।

0: सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरीघाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है

0: हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी,
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय है जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन

0: सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की

0: मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो
4: अरे
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो,
7: अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है,
9: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
10: लुई पाश्चर
11: सर,
10: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
11: कहिए सर।
10: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
11: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
10: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल

0: खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।

0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया, और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल

0: a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं।
5: इछे निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
7: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
6: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
7: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
8: कितना?
7: अच्छा तो 2 करोड़।
6: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
9: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिकाऊं।
6: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।
4: FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति प्रतिमा पहारे की।

0: लोक रंजनी।
1: भाई बहनोनी, लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर आज आपका साथ छे आपकी बहन प्रतिमा पहारे, तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनोनी, हम सभी जाना कि आज को दौर डिजिटल दौर आए, जे में हमारा गांव न भी आप सभी का हाथ में स्मार्टफोन रहे, जे पर हम खेती किसानी की जानकारी ले सकांज, मंडी को भाव देखी सकांज और बैंक का सभी लेन देन का काम भी करी सकांज। ये सभी काम आज पलक झपक तज मोबाइल से हुई जाए, ये एक अच्छी बात आए, पर जहाँ सुविधा न हो वहां कुछ परेशानी न भी हुई सकज। पहला हम सुनता था जेब कतरा न सी सावधान रहा, न वांच आज हम सुनांच कि साइबर सुरक्षा की जानकारी रखा, न साइबर ठग न ऑनलाइन धोखाधड़ी सी सावधान रहा। तो आओ जाना कि ऑनलाइन धोखाधड़ी सी कसा बचा। सबसे पहले ध्यान रखा कि कदी हमारा नंबर पर कोई अनजान नंबर सी फोन आव, न वो हम सी लॉटरी या अन्य प्रकार की कोई गोलमोल बात कर, तो हम उनकी बात न पर ध्यान नहीं देवा, न तुरंत फोन काटी देवा। इना फोन कॉल पर कई बार धोखाधड़ी वाला व्यक्ति अधिकारी बनी न भी बात करने की सोचज, तो ऐसा मा सावधान रहा। मैं बनोनी ध्यान रखा कि कदी भी हमसी कोई व्यक्ति ओटीपी मांग, तो उनका अपना मोबाइल पर आने वाला ओटीपी नहीं देवा। आज का समय में ओटीपी घर की तिजोरी की चाबी जसो छे। एक साथज ध्यान रखा कि कदी भी कोई अनजान लिंक नहीं खोला है। अपना मोबाइल का पासवर्ड ऐसा रखा जी कोई दूसरो व्यक्ति आसानी से नहीं खोली सका। मैं बनोनी कदी भी कोई व्यक्ति आपका ऑनलाइन धोखाधड़ी का जाल में फंसाना न डराना की कोशिश कर, न कदी अनजाना में हमारा साथ कोई धोखाधड़ी हुई जाए, न हमारा खाता से पैसा कटी जाए, तो हमका बिना घबराहट का बैंक जाई कर अपना ATM कार्ड का बंद कराउनु चाहिए। साथ साथ सरकार ने भी साइबर अपराध से निपटने का लेन एक देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर जारी कियो। ये नंबर छे 1930। इना नंबर पर हमका जल्द से शिकायत दर्ज करानु चाहिए। साथ ही हमका अपना नजदीकी थाना में जाए ना या इंटरनेट का माध्यम से www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करानु चाहिए। तो भाई बहनोनी याद रखा, सजगता ज आपकी सुरक्षा है। न भाई बहनोनी अब समय छे आपकी पसंद का निमाड़ी लोकगीत नको। पहला गीत का लेन पत्र भेजना वाला

करता छे शांतिनगर इंदौर सी कुमारी देविका चौधरी कविता संजय वाणी मनीषा वाणी बीना खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे ललिता नारायण खर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी अरु मालती चौधरी साथजीना गीत का पसंद कियोच ग्राम रतनपुर तहसील झिरनिया जिला खरगोन सी भागीरथ नायक जितेंद्र नायक सुभाष नायक रविंद्र नायक शिवानी अश्विनी हर्षराज अरविंद्र आदित्य अरु गुनगुन नायक न ताओ सुना धर्मेंद्र सरमंडल न साथी न को गायली साक्षरता गीत।

अगला गीत का लाइन पत्र भेजना वाला छे ग्राम कपासथल तहसील बड़वाह सी डोंगर सिंह सावनेर का साथ ग्राम लोहारी सी राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला धनजे अरु गायत्री धनजे का साथ खुर्दी रोड मानपुर सी विजय वेद रानी वेद महिमा वेद अरु नीतू वेद ताओ सुना जयराम सावनेर न साथी न को गायली लोकगीत।

अगला लोकगीत का पसंद करना वाला छे यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश सी दिलीप मालाकर योगेश मालाकर सुनीता मालाकर मुस्कान मालाकर शीतल मालाकर योगिता अखिलेश लवण्य आरु राजकुमारी मालाकर न ताओ सुना जीवन लता खेड़े न साथी न को गायली लोकगीत।

0: लोक रंजनी।
1: अभी लोक रंजनी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब सुनिए राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के
2: रंग तरंग।
3: रंग तरंग के आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग दरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत, उन्हीं के एल्बम से, अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स, इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से। शिल्पा राव की आवाज में अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

कि यूं होता तो क्या होता, जगजीत सिंह को आप सुन रहे थे इस गजल में। इसके साथ ही आज का रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। रंग

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। Thank you.

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज़ में। ये गीत आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीता भी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

0: फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी ने इसे लिखा।
1: वो जब याद आ

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में यूं खिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी, जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिली है।

0: लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है। ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी, और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश के बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है, चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफ़र में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जब भी खुशियाँ आती है तो जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज़ नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहाँ यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताज़ा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे

खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी ज़रूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत ज़रूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज़ पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, ज़माने में गुलमोहर की छाँव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाज़ार है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे ये कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फूलों के बाज़ार का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाज़ार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में और गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है देता है तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हमारे अजमेर ज़िले के पुष्कर में होती है जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है, यहाँ पर उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि गणेश जी के आगमन के समय हर त्यौहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है। और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल मिस्ट रेड एक अद्भुत फूल है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में गिना जाता है और ये माना जाता है कि केवल दो ज्ञात पौधे ही बचे हैं और एक इंग्लैंड में है और दूसरा न्यूजीलैंड में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये रेड कलर नाम ज़रूर है इसका, रेड ज़रूर नाम है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। और साथ ही ये हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ वही है जो कम दिखाई देती है लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में है। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफ़ी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है।

तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की, फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताज़ा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, ज़रूर मुझे लिखिए।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है, सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में, शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफ़ी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए, जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज़ कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का टूर किया था और वहाँ पर फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फ़ोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए। और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुँचे। चलिए हम पहुँचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

फिल्म अपने पराये से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुनवा पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहाँ पर प्रश्न लिख दिए हैं हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप ज़रूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांह की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते ना

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

0: दुख का समय हमारे जीवन में एक चुनौती की तरह आता है। इस चुनौती को हम अपने संयम, धैर्य और विवेक से बड़ी सहजता से परास्त कर सकते हैं।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के

0: करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी, बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश की शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को

0: संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे।

अनी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

3420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: दुनिया जी।
1: मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: मुझसे न पूछो कि तुम।
1: और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा। और हमारी जानी मानी अदाकारा, जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओ, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, ख़ास तौर से विविध भारती से।
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ जी। और वो सुनते थे और भी मजा आता था, बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर IPL वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्नंग था। और बचपन क्या आजकल जब
1: बहुत सारे चैनल्स हैं,
2: लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके, गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता
1: है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनने चलते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली आपने? बताइए हमें।
2: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करते
2: थे। जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगाल

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा,
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफ़र कैसे तय किया और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज़ है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको, पापा पहाड़ी थे तो हमको

0: देहरादून वैली में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में,
1: जी
0: लक्ष्मण सिद्ध होता था और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे, तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
1: जुड़ाव बहुत
0: बहुत
1: रहा।
0: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है, तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
1: नौशिया
0: तो
1: होता
0: हम
1: है।
0: लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर मसूरी
1: है।
0: पहुँचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी, और बाद में तो खैर जब कार या उससे, तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
1: जी
0: वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है,
1: मशहूर।
0: पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे, और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे, और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने
1: अच्छा।
0: के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
1: लग नहीं
0: हैं
1: रही कि आप शैतान थी, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने
0: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से, जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
1: जी
0: का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब
1: ओहो।
0: ज़्यादातर, मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल
0: फ़ोन
1: में
0: पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे, या
1: हैं।
0: अपने कमरे में, या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे
1: क्या बात है,
0: हैं, बंदरों की तरह पेड़ों में, आम आजकल के बच्चों
1: जामुन
0: ने
1: खाना।
0: आप लोग को, मतलब या तो
1: हाँ।
0: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं, या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
1: क्या बात
0: जामुन,
1: है,
0: अमरूद खाए हुए हैं,
1: क्या
0: उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने
0: हाँ,
1: माता-पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के
1: साधन
0: पास
1: है, माध्यम
0: साधन
1: है।
0: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे, कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
1: जी
0: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मज़ा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का, मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मज़ा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था।
0: उत्तर प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे, डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स. तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं. मैं 50-55 साल पहले की बात कर,
1: अलग ही दुनिया थी,
0: हाँ, नहीं सोच ही नहीं सकते थे.

0: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ओपेरा। इतने में एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में। उस टाइम एनएसडी ही थी, अब तो खैर
1: जी
0: काफ़ी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
1: पुणे में
0: है,
1: है और
0: पुणे
1: पुणे
0: में
1: में
0: है, और लखनऊ में भी अब खुल
1: जी
0: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: उसी
1: है।
0: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे
1: हाँ
0: कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वीज़ा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दी,
1: ओहो, किसी को बताया नहीं आपके
0: किसी
1: घर
0: को
1: में?
0: नहीं बताया घर में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
1: हाँ, एनएसडी करूंगी।
0: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है, लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब थी कि भट जी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
1: बिटिया।
0: बेटी
1: हाँ
0: का,
1: जी।
0: भट जी की नौनी तो बहुत
1: हाँ
0: होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भट जी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भट जी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भट जी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
1: नौटंकी।
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे,
1: बहुत बुरा
0: भांडगिरी
1: माना
0: करेगी,
1: जाता था,
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो
1: जी
0: वहाँ के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए,
1: क्या बात है।
0: वहाँ मेरा एडमिशन कराया, और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊँ
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ,
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: की।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी कि कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपये पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था ए ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी रकम
1: बहुत
0: थी।
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफ़र रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं ये फिल्म हम आपके हैं कौन। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन वाला।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहाँ की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम

0: बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गाँव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन
1: है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं, 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफ़ी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो

0: एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसी बोलते हैं गांव में कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
1: दुख हुआ होगा फिर आपको।
0: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है बताओ पहाड़ों में, आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
1: खा जाते हैं,
0: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या वो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आस पास के गाँव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है। तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
1: सच में
0: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूँ, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो ये भी
0: कठिन है सारा काम, लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं कि हम कहां से आई।
0: पहाड़ियों पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं
1: जी जी,
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, में सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशुपुरी रखेंगे, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो एनवायरनमेंट, इसमें सुधार होने का

0: क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी स्तर पर,
0: निजी स्तर पर कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही हम
0: वही हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देखिए।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी
0: बिल्कुल। और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी हूँ, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी

0: होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं। क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि
1: जी
0: मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो NSD रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5,
1: जी
0: और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे
1: जी
0: मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं,
1: करती
0: देखो
1: क्या
0: हम
1: हो, काम
0: इमेजिन की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी।
1: क्या
0: लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि
1: जा
0: हम
1: रही है ये
0: कैरेक्टर
1: देखो।
0: आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं NSD से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज़ मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी। तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ कुछ
0: दिलवाले
1: होता
0: की,
1: है और
0: दिल,
1: दिल वाले
0: हाँ कुछ
1: दुल्हनिया
0: कुछ
1: ले
0: होता है कि
1: जाएंगे।
0: रिफत भी, और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार, और
1: उमराव
0: आजकल
1: जान में भी आपने काम
0: उमराव
1: किया,
0: जान में भी
1: उसमें भी
0: काम किया, और ये
1: खास
0: मेरा जो धारावाहिक है, आपने
1: विवाह।
0: सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी
0: उसमें
1: वो
0: मेरा
1: बहुत मशहूर
0: किरदार
1: हुआ।
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि कला
0: मम्मो
1: मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप, कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये

0: रहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
1: रंगमंच है,
0: रंगमंच है जिंदगी। तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये तो जिंदगी सिखाती है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है,
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज़्यादा बड़ी है, वो सब ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी,
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आएँ?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण, 8 घंटे

0: या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं,
1: जी
0: उनको उनको काम कम मिल रहा है, या
1: जी
0: मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे
1: तलाश
0: रहे हैं,
1: कर रहे
0: लेकिन
1: हो।
0: लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और ख़ासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
1: लियाकत
0: क्योंकि
1: है,
0: हाँ,
1: प्रतिभा
0: और
1: है।
0: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए।
1: जी
0: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खान

0: इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो ज़रूर आइए.
1: जी
0: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा या शाहरुख खान के खान होना
1: जी बिल्कुल.
0: पड़ेगा. आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं.
1: बिल्कुल. और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
0: शाहरुख
1: शाहरुख
0: खान
1: खान
0: भी
1: की माँ.
0: आउटसाइडर था, अक्षय
1: जी
0: कुमार जी आउटसाइडर थे.
1: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी. और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं. इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं. अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं. बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी.
0: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव
1: जी
0: करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है.
1: बताना
0: चाहे
1: पड़ता
0: आप
1: है.
0: हाँ चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए. और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्टी था, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए. क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी,
1: क्या बात
0: या
1: कही
0: हम जो रोल
1: आपने.
0: करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है. और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला
1: दूरी.
0: माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है. तो एक ये सब
1: दोहरी तेरी
0: संघर्ष करने
1: जिम्मेदारी भी
0: पर.
1: निभानी पड़ती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल. और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी.
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है,
1: बिल्कुल. और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
0: और उसमें
1: लंबी
0: शक्ति
1: यात्रा.
0: है और किसी भी चीज़ का सामना कर सकती है. वो सब औरतों ने प्रूव किया है.
1: जी अब गाना सुनवाए एक.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल.
0: जी.

0: लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है। तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी हैं। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ। और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर। तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम जी, कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत ख़त्म ना करें। तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगी।
1: ज़रूर हम ज़रूर
0: तो
1: आऊँगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली। तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नायक का था। और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से ये प्रसारण सफल हुआ। और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियाँ हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड।

0: बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूज़िक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी,
0: जी।
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा,
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी,
1: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए।
0: जी जी।
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूज़िक में और डिवोशनल म्यूज़िक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज़ किया। तो ये इस तरीके का रहा सफ़र,
0: ये सफ़र इस तरह से चलता रहा।
1: जी, दिल्ली।
0: हमारी बातचीत के सफ़र में अब एक गाने की जगह बनाते हैं।
1: ज़रूर।
0: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
0: अच्छा। देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूँ
1: जी,
0: और वो है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफ़ी बजाते रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: है ना
1: जी, जो मैं आपको

0: बांसुरी सुना रहा हूँ ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है,
1: क्या
0: पिताजी के साथ।
1: वाह,
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा,
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहाँ से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की, और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें, और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें।
1: वाह।
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, वो इतना आसान, जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी,
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी,
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल,
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो।
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी,
0: जी जी। और
1: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
0: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस्त है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक

0: पिक्चर है, गुड बाय है, मन मर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली एलएलबी,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर हैं
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल
0: भी बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती वो,
1: हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंटेशन
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माई गॉड मूवी
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं
1: जी।
0: और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
0: जी
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वह फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: टॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस. तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें से एक ये था.
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था.
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू.
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं.
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको.
1: जी जी जी जी.
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा.
1: जरूर बिल्कुल, बहुत जरूरी है.
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है.
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है.
1: हाँ हाँ हाँ.

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में, वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर, एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं
0: जी।
1: बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहाँ से लाए?
1: नॉर्मल, जहाँ से मैं, ये तो मैंने खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक, मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया है 2011 में।
0: जी,
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे।
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है।
0: बिल्कुल।
1: इसका साउंड में सुनाता हूँ आप
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
0: बहुत बहुत बजाया मैंने इसको फिल्म म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी,
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है।
1: जी,

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है
0: जी जी।
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारे गाँव है,
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है
0: जी।
1: तो इस महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका और इस, अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है जी, कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है,
1: मैं समझ सकता हूं।
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो, जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: इतनी आसानी से नहीं जाने नहीं जाने एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
1: तो
0: और
1: मैं
0: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
1: हीरो,
0: देखिए फरमाइश भी आ गई।
1: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
1: कॉम्प्लीमेंट है।
0: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी,
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है जी, कुछ जी। फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके।
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का।
0: वाह वाह, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी खंडवा। निमाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवाते हैं कमल सिंह रावत और साथियों के गाए पारंपरिक लोक गीत।

श्रोताओं, आपने सुने पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत कलाकार कमल सिंह रावत और उनके साथी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से। अब आपको सुनवाते हैं युववाणी।

0: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम छो। युवावाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त शांभवी का मंद मंद हवा की शीतल लहरों सा ठंडक भरा और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर मंगलवार की तरह युवावाणी के खजाने में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शहर, जहां हमारी सवारी झारखंड राज्य के पर्यटक शहरों से गुजरते हुए आ पहुंची है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी भारत के रत्न गुजरात राज्य की ओर। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। गुजरात की मनोरंजक सैर पर जाने से पहले हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी सुन लीजिए और यात्रा के दौरान इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ट्यूलिप महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किन शहरों में आयोजित होता है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, शत्रुंजय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक सुनते रहिए युवावाणी।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, शहरों और राज्यों का सफर करते हुए हम कितना आगे आ गए हैं ना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम इसी तरह आपको तेलंगाना राज्य के सफर पर मनोरंजक जानकारी और गीतों के माध्यम से ले जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, 1 जुलाई 2013 को सर्वसम्मति से एक अलग तेलंगाना राज्य के गठन की सिफारिश करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। विभिन्न चरणों के बाद इस विधेयक को फरवरी 2014 में भारत की संसद में रखा गया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत विधेयक को उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर तेलंगाना राज्य के गठन के लिए भारत की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके बाद 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति की सहमति से इस विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और फिर आया वह

दिन जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का आधिकारिक गठन हुआ और तब से प्रतिवर्ष आज यानी 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। दोस्तों, तेलंगाना दिवस पर आमतौर पर परेड, राजनीतिक भाषणों और समारोह के साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक और परंपराओं का जश्न मनाया जाता है और राज्य के वर्तमान 33 जिलों में राजकीय सार्वजनिक अवकाश के साथ ही उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। बहरहाल, आइए दोस्तों आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं गुजरात राज्य की ओर, जहाँ की कला, संस्कृति, भव्यता, सौंदर्य, आधुनिकता, शिक्षा, भाषा, पोशाक और खान पान अपने आप में अनूठे और विशेष है और यहाँ के गीत संगीत, लोक नृत्य और गरबा रास की शान ही निराली है।

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अत्यधिक औद्योगिक राज्य गुजरात, जिसके उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का प्राकृतिक सौंदर्य, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र की रफ्तार और आधुनिकता, और पूर्व में मध्य प्रदेश, अरब सागर की लहरें और सिंध प्रांत का इतिहास है। दोस्तों, गुजरात की तटरेखा देश की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसका अधिकांश भाग काठियावाड़ प्रांत द्वीप पर स्थित है। वैसे तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, गुजरात शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द गुर्जर राष्ट्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है गुर्जरों का देश। प्राचीन शिलालेखों में इस राज्य को गुर्जर मंडल और गुर्जर देश के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ है गुर्जरों की भूमि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात की उत्पत्ति गुर्जर

कलरों से हुई है, जिन्होंने 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात पर शासन किया था। यही कारण है दोस्तों कि आधुनिक राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को मुगल काल से पहले सदियों तक गुर्जरत या गुर्जर भूमि कहा जाता था। दोस्तों, किंवदंतियों की भूमि कहलाए जाने वाले गुजरात का इतिहास भी यहाँ के नवरात्रि उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और कच्छ भुज के रण उत्सव की भांति भव्य है, क्योंकि यह राज्य सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक था और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 23 प्राचीन महानगर शामिल हैं, जिनमें विश्व का पहला ड्राई डॉक लोथल, 5वां सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा और गोलाधोरो महत्वपूर्ण स्थल हैं। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, लोथल को विश्व के पहले समुद्री बंदरगाहों में से एक माना गया है। समृद्ध इतिहास के साथ ही गुजरात अपनी विविध स्थलाकृति के लिए भी प्रसिद्ध है। कच्छ के विशाल रण के मौसमी नमक रेगिस्तान से लेकर मध्य गुजरात के उपजाऊ मैदानों और काठियावाड़ प्रायद्वीप में सौराष्ट्र के पथरीले तटों तक फैला हुआ गुजरात अपने 48 परिचालन बंदरगाहों के माध्यम से भारत के समुद्री माल का एक बड़ा हिस्सा संभालता है और साथ ही यह राज्य भारत के सबसे आर्थिक और औद्योगिक रूप से प्रगतिशील राज्यों में से एक है, जो विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

हर हिस्सा समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और दर्शनीय स्थलों के साथ साथ कला, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। लुप्तप्राय एशियाई शेर के एकमात्र प्राकृतिक आवास के रूप में विश्व प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान हो या पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की वाव, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या सौराष्ट्र के सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर, द्वारिकाधीश की द्वारिका हो या कच्छ का सफेद रण, गिर का गिरनार हो या सूरत का डायमंड बोर्स, अहमदाबाद में साबरमती नदी का तट हो या भावनगर की शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित पालीताना मंदिर, सभी स्थानों की अपनी विशेषता है। और दोस्तों, यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों के साथ हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाएं भी बड़ी आकर्षक हैं, क्योंकि गुजरात की कला और संस्कृति अपनी जीवंतता, रंगों की विविधता और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती है। जहाँ एक ओर पाटन की विश्व प्रसिद्ध दोहरी इकत वाली पाटन पटोला साड़ियों की जटिल बुनाई है, तो दूसरी ओर जामनगर और कच्छ की प्रसिद्ध टाई एंड डाई कला से बनी बांधनी और घारचोला के रंग हैं। कांच के टुकड़ों पर और चमकीले धागों से बनी बारीक कढ़ाई वाली कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, या फिर वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक रंगों से कपड़ों पर की जाने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग अजरक और नक्काशी रोगन कला के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही दोस्तों, गुजरात का जिक्र हो और गरबा और डांडिया रास की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नवरात्रि के दौरान देवी की आराधना में किया जाने वाला गरबा हो या विशेष कर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला पर आधारित लकड़ी की दो छड़ियों से गोल घेरे में किया जाने वाला डांडिया रास, या फिर भावनगर का अनोखा टिप्पणी लोक नृत्य जहाँ महिलाएं जमीन पर लकड़ी की छड़ी यानी टिप्पणी पीट कर ताल बनाती हैं। यहाँ का हर लोक नृत्य और संगीत हमें उत्साह और उमंग से भर देता है।

0: दोस्तों गुजरात में केवल पर्यटन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि व्यंजनों में भी आपको विविधता से भरे अनोखे स्वाद चखने को मिलेंगे। उत्तर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात यहाँ के 5 मुख्य क्षेत्र हैं जो गुजराती व्यंजनों में अपना अनूठा योगदान देते हैं और यही कारण है कि आपको यहाँ के चटपटे, तीखे और मसालेदार भोजन में भी मिठास का अनुभव होता है। यहाँ के विशेष और प्रमुख व्यंजनों में आपको गुजराती थाली, ढोकला, पाथरा, फाफड़ा, खमण, चावल के आटे से बना खीचू, पापड़ी नो लोट, खीचिया पापड़ का फरसान यानी नाश्ता, बाजरे का रोटला, भाखरी, मीठी चटपटी कढ़ी, थेपला और केसर और सूखे मेवों से बनी चावल की बिरंजी, आलू और मसालों वाला खट्टा मीठा भात, दूध पाक, मीठी मीठी लापसी, मोहन थाल, राजगिरानी पूरी, दाल ढोकली, पपीता का संभारा, केरीनू शाक और उंधियू, उंबाड़ियू, दाल वड़ा, लोचो, हांडवो, खांडवी जैसे बहुत से व्यंजन हैं। इतने कि हम नाम बताते बताते और आप खाते खाते थक जाएंगे। वैसे दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे ना कि गुजरात के नमकीन व्यंजनों में मिठास क्यों होती है। यदि आप यह सवाल किसी गुजराती से पूछेंगे तो उनके दो ही जवाब होंगे। या तो वे कहेंगे कि हमारे अतिथियों के प्रति हमारे प्रेम की मिठास है, या फिर यह कि गुजरात के पानी में ही मिठास है। लेकिन यदि भोजन पद्धति को देखें तो व्यंजनों में खट्टे, मीठे और तीखे स्वाद की जुगलबंदी करने के लिए आम तौर पर गुड़ या चीनी का प्रयोग होता है। अब दोस्तों बात करें गुजरात पहुंचने और घूमने के परिवहन मार्गों की, तो पूरे राज्य में लगभग 17 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, कांडला, वडोदरा, राजकोट हवाई अड्डा, पोरबंदर, भावनगर और केशोद हवाई अड्डा शामिल हैं। साथ ही बात करें सड़क मार्ग की, तो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम प्रमुख बस सेवा प्रदान करता है, जो पूरे राज्य और भारत के अन्य हिस्सों के लिए उपलब्ध है। यदि आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और वडोदरा रेलवे स्टेशन शामिल है। और दोस्तों आप चाहें तो समुद्र मार्ग से भी गुजरात पहुँच सकते हैं। तो चलिए गुजरात के मनोरंजक सफर का आनंद लेते हैं और थोड़ा झूम उठते हैं। ए हालो
1: नार अलबेली अनमली छे पहली बात,

दोस्तों, आज हमारे शहर में हमने और आपने मिलकर रेडियो के माध्यम से गुजरात राज्य के छोटे से सफर का मजा लिया और यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी, जब हर मंगलवार आपको गुजरात के अलग अलग पर्यटक शहरों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन आज के हमारे शहर में बस इतना ही। अब समय हो चला है कार्यक्रम के आरंभ में पूछे गए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर देने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, ट्यूलिप महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किन शहरों में आयोजित होता है? इसका उत्तर है श्रीनगर और नई दिल्ली। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, शत्रुंजय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, इसका उत्तर तो आप कार्यक्रम के दौरान समझ ही गए होंगे। जी हाँ, इसका उत्तर है गुजरात। और इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति आपकी दोस्त शांभवी को। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ गुड टाइम, गुड बाय, नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संकेत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत इन दिनों के मौसम से मुतालिक है। जी हाँ, गर्मी की बात है। आशा जी की आवाज है, फिल्म मुड़ मुड़ के न देख।

गर्मी, शिमला, इन बातों के बाद अब सखियों की बातें आपको सुन पाते हैं। ये मुनीम जी फिल्म का गाना शैलेंद्र का गाना है, लता जी और साथियों ने गाया है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: एक महत्वाकांक्षी बीवी।
1: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते ही, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
0: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
1: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। कितना? अच्छा तो 2 करोड़।
0: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
2: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिका हूँ।
0: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर।

0: भार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।
1: फिल्म जुदाई के बाद आपकी मुलाकात रफ़ी साहब की आवाज़ के गीत से कराते हैं। दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गीत लीजिए सुनी, ये मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है।

0: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
1: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
2: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
0: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: ओ मीठी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भीगी रात फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे श्रोताओं। अब राहत की बात लता जी की आवाज़ में, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत, फिल्म वो कौन थी।

श्रोताओ, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के गीत आपके दिल के करीब होंगे, आपके पसंदीदा गीतों की फहरिस्त में शामिल होंगे और अगला गीत जो कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा, ये भी पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि अगर पहले गाने आपको पसंद आए हैं तो ये गाना भी अच्छा लगेगा। मिस मैरी फिल्म का गीत है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़।

0: श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी खंडवा है, शाम के 7 बजे हैं। आइए दिल्ली केंद्र से सुने हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए।

0: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।
4: महत्वाकांक्षी बीवी।
5: हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा।
4: एक प्यार में हर हद तक गुजर जाने वाली प्रेमिका।
5: अगर आप राज को मुझसे शादी करने के लिए मना ले तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी।
6: कितना?
5: अच्छा तो 2 करोड़।
4: और इन दोनों के बीच में फंसा एक लाचार ईमानदार पति।
7: अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिका हूं।
4: हम सुनाएंगे जुदाई फिल्म की कहानी और गीत खास आपकी फरमाइश पर। इस बुधवार सुबह 7:20 पर जरूर सुनिएगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम।
8: सात सुरों की सरगम यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
2: तुम आए तो आया मुझे यार, गली में चांद निकला।
1: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा से। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए भोपाल केंद्र से आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी, स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मैं मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थ में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जाँच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया।
2: जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख एक जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्री प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
0: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत

0: बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादे बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनिनो का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभावों पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में वाघमारे परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और बेल मेटल की अनूठी कलाकृतियां बनाता है, जिसमें मोर, चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग

का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आप किसान श्रोता सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम लेकर हाजी छे आपकी बहन प्रणीता, तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहन होनी, किसान भाई खेती में तो लाभ कमावज, पण ओका साथ साथ वो अन्य खेती से जुड़िया कार्य कर ताकि उनको लाभ या आमदनी भी बढ़। न खेती से कदी कदी होने वाला नुकसान का वो कम भी करी सक। एकालेन भाई बहन होनी, मध्य प्रदेश शासन न मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना चलायल छे, जेको उद्देश्य किसान अरु पशुपालक भाई नख उनकी आय बढ़ानु अरु राज्य में दूध उत्पादन का प्रोत्साहन देनु छे। इन योजना का तहत लाभार्थी नख उच्च नस्ल की दो भैंस खरीदने पर 50 से लेकर 75% तक की सब्सिडी दी जाने की बात करेल छे, जो सामान्य वर्ग न अनुसूचित जाति जनजाति का लेन निर्धारित छे। इन योजना की खास बात ई छे कि ई अनुदान मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने पर अज मिलग। न भैंस खरीदने जाने आने रहने खाने तक को खर्चो भी शासन उठावगी। बस आवश्यकता छे तो अपना मूल निवासी को प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, न पासपोर्ट साइज फोटो की, न आवेदन आपका नजदीकी पशु चिकित्सा का चिकित्सा अधिकारी या उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं का कार्यालय से संपर्क करीकन आप आवेदन फॉर्म ले लियो, न भाज भरीकन जमा करी दियो। यदि इन योजना का तहत आपको लाभ मिलने की मंजूरी मिली गई तो अनुदान राशि सीधा आपका बैंक अकाउंट में जमा हुई जाएगा। एक ही कोई ऑनलाइन वेबसाइट या फिर लिंक नहीं छे तो फर्जी लोग या फिर लिंक से बच जाओ, न इन योजना को लाभ उठाओ। न भाई बहनोनी, अब कार्यक्रम का आगे बढ़ावा, न आपसे पूछी लेवा आज को प्रश्न। तो हमारो आज को प्रश्न छे, खेत में खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी छे? प्रश्न एक बार अरु ध्यान से सुनी लो कि खेत में खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी छे? न हमेशा की तरह इना प्रश्न को उत्तर हम आपको देवांगा कार्यक्रम का आखिर में। तब तक सुनता रहो कार्यक्रम किसान वाणी। न भाई बहनोनी, अब सुनी लेवा एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायज साधना उपाध्याय न साथी नना।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट

0: पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: भाई बिन्नुहुनी, शासन द्वारा खेत बचाओ अभियान देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का लेन एक राष्ट्रव्यापी पहल का रूप में शुरू करेल छे, जेको मुख्य उद्देश्य देश भर में किसान नख मिट्टी की सेहत सुधारनू, रासायनिक उर्वरक नख सही न संतुलित मात्रा में उपयोग करनू, प्राकृतिक खेती मोटा अनाज उत्पादन का बढ़ावा देनु और टिकाऊ कृषि पद्धति नख अपनाने का लेन जागरूक करनू छे। ये अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरा देश में चलायो जाएगा। एका तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी गांव गांव जाइकन किसान भाई नख मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण, हरी खाद निर्माण, नव को उपयोग, फसल विविधीकरण, मौसम आधारित खेती न अरु भी कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी न सलाह देगा। साथ ही किसान भाई बहन की जिज्ञासा अरु प्रश्न न का जवाब न समाधान भी देगा। एक अलावा किसान नख कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक खेती करनू, नकली खाद बीज कीटनाशक न की पहचान करनू, शासन संबंधी योजना की सही जानकारी प्राप्त करने का लेन मार्गदर्शन देनु, न फर्जी लोग या फिर फर्जी वेबसाइट से बचनू भी बतावेगा, ताकि हमारा किसान भाई की खेती की लागत कम होवा न मुनाफो बढ़ और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो छे वो लंबा समय तक बनी भी रहे न बढ़ती भी रहे। तो भाई बहन होनी, यदि आपका पास भी कृषि वैज्ञानिक या अधिकारी आवा तो इना बार अपनी सभी शंका न को समाधान करी ले जो, न अपनी खेती कभी लाभकारी व्यवसाय बनाई ले जो। न भाई बहन होनी, आओ अब हम सुना वार्ता। वार्ता को विषय छे प्रकृति का अनुपम उपहार नीम। न वार्ताकार छे सविता परसाई।
5: पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। ये हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। हमारे खाने का अनाज, दाल, सब्जी, फल, मसाले, औषधि, मकान, झोपड़ों और भवनों को बनाने की सामग्री, रेसे, टेनिन, जानवरों के लिए चारा आदि अनेक पदार्थ पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे जल के बहाव, बाढ़, मृदा हास्य, मृदा की उर्वरता, तापमान को, प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए वातावरण की रक्षा व शुद्धि करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों में से आज हम मानव को प्रकृति प्रदत्त एक अनूठे उपहार नीम के बारे में बातचीत करने को जा रहे हैं। इसके बहुगुणी होने के कारण इसे न केवल मनुष्य अपितु पशु जगत के लिए भी वरदान कहा जाता है। नीम एक सदाबहार भारतीय वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम अजय डायरेक्टिन इंडिका है। हिंदी में इसे नीम, संस्कृत में निम्बा या अरिष्टा, गुजराती में लिम्बड़ी, मराठी में कड़ूलिम्ब, बंगाली में निमगाच, पंजाबी में निम तथा अंग्रेजी में मंगोसा कहा जाता है। नीम जैसे गुण किसी अन्य वृक्ष में नहीं हैं। पूरे भारत में नीम हमारे आसपास के पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की इतनी बड़ी आबादी के जीवन से जुड़ा और अन्य कोई वृक्ष नहीं है। हमारा जिला भी नीम के लिए पहचाना जाता है। यहाँ भी बहुतायत में नीम वृक्ष दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि नीम के वृक्ष बृहद संख्या में उपलब्ध होने के कारण ही हमारा क्षेत्र निमाड़ कहा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि नीम को पृथ्वी पर सबसे उपयोगी वृक्ष माना जाना चाहिए। नीम वृक्ष चिरकाल से भारतीय ग्रामीणों का एक मित्र और संरक्षक रहा है। सदियों से भारत में इस वृक्ष का उपयोग स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए तथा अनेक रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने, खाद्यान्नों के भंडारण में तथा खेतों के लिए उर्वरक एवं प्राकृतिक जीव मारक के रूप में होता आया है। नीम वृक्ष उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शुष्क एवं आर्द्र अर्थात सभी प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। सभी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में पनपने की क्षमता, प्रत्येक भाग की व्याप्त उपयोगिता तथा कीटनाशी एवं विभिन्न

रोगों के निदान की संभावनाओं से समृद्ध है। यह वृक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है। ईसा से 4000 वर्षों पहले भारत में वैदिक काल से नीम के व्यावसायिक उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध थी। वेदों में इसे विभिन्न नामों से विवेचित किया गया है, जैसे निम्बम, निम्ब, निम्ब पत्रम। आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में नीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान में नीम पर सारे संसार में गहन वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि एक वृक्ष में इतने गुण कैसे आ गए। इस वृक्ष की रासायनिक विशेषताओं पर भी सघन खोज चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में नीम का महत्व बहुत बढ़ गया है तथा इसे सारे संसार के वैज्ञानिकों ने इसके रासायनिक औषधीय गुणों को पहचाना है। उन्होंने इसे अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक निरापद और कृत्रिम नाशी जीव मारकों का स्थानापन्न दिया है। नीम जैसे गुण किसी अन्य वृक्ष में नहीं है। पूरे भारत में नीम हमारे आसपास के पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की इतनी बड़ी आबादी के जीवन से जुड़ा हुआ अन्य कोई वृक्ष नीम की तरह नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि नीम को पृथ्वी पर सबसे उपयोगी वृक्ष माना जाना चाहिए। नीम के सभी भागों अर्थात पत्तियों, फूल, फल, छाल एवं जड़ का जीवन उपयोगी महत्व है। नीम की ताजी पत्तियों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व एवं विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नीम के बीजों से प्राप्त तेल को अनेकानेक उपयोग हैं। इसे कीटनाशक रसायन बनाने, हृदय रोग, बवासीर, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, कृमि, पक्षाघात, रतौंधी आदि की दवाओं में प्रयोग किया जाता है। नीम के अन्य उत्पादों में फल, छाल, जड़, पत्तियों के सैकड़ों उपयोग प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में गहरे बैठे हैं। नीम की पत्तियों का रस पीलिया व त्वचा रोगों में काम आता है। नई कोपले चबाने से दांतों के कीटाणु मर जाते हैं तथा वसूणों का दर्द कम हो जाता है। नीम की पतली टहनी को दांतों से चबाकर ब्रश जैसा बनाकर अगर हम रोजाना दांतों को साफ करने में उपयोग करें तो हमारे दांत चमकीले एवं मजबूत बने रहेंगे। रक्त के शुद्धिकरण, बच्चों के पेट की कृमियों को नष्ट करने, घाव तथा फोड़े फुंसियों को धोने में नीम की पत्तियाँ अत्यंत लाभदायक होती हैं। नीम की सूखी पत्तियाँ प्राचीन काल से अनाजों के भंडारण में कीटों से सुरक्षा के लिए उपयोग में की जाती है। नीम के पत्तों का धुआं मच्छर को भगाने के लिए उपयोग किया जाना सर्वविदित है। भारत में बहुत से गांव में शरीर में इसका तेल लगाते हैं जिससे मच्छरों एवं चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। नीम की पत्तियां अच्छा पशु आहार हैं। नीम की पत्तियों को अगर हम खेत में डाल दें तो कभी फसल में कीड़े नहीं लगते हैं। नीम के फल निम्बोली को हम लोग अनुपयोगी पदार्थ समझकर छोड़ देते हैं, जबकि निम्बोली का अनेक लाभ है। लगातार 15 दिन तक 5 निम्बोली खाने से पेट के विकारों से मुक्ति मिलती है और भूख भी खुलकर लगती है। नीम के पेड़ पर अगर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है तो इससे निकाले हुए शहद से अच्छा कोई शहद नहीं हो सकता। मुहासों में नीम के पेड़ की जड़ को पीसकर पानी के साथ घिसकर लेप लगाने से लाभ होता है। नीम की छाल में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है जिसका उपयोग चमड़ा पकाने के लिए किया जाता है। नीम की लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी लकड़ी से बने फर्नीचर में कभी घुन नहीं लगता है। नीम के फल को पीसकर नाभि के नीचे लगाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नीम की छाल में औषधीय गुण होते हैं। सूखी खुजली, पुराना ज्वर, कमर घुटने का दर्द, दांत खाज, नेत्र ज्योति कम होना, दंत रोग, मुंह में बदबू आना जैसी बीमारियों में छाल का उपयोग किया जाता है। बवासीर, चर्म रोग, अजीर्ण, सिर दर्द आदि बीमारियों में निम्बोली का उपयोग किया जाता है। कृषि में रासायनिक कीटनाशकों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण अनेक समस्याएं उभर कर आ रही हैं। इसमें पर्यावरण प्रदूषण, कृषि उत्पादों के जहरीले रसायनों का समावेश, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव प्रमुख हैं। ऐसे में

0: हिम से तैयार उत्पाद अत्यधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं, जिन्हें संपूर्ण विश्व में उपयोग किया जा रहा है। ये लगभग 300 प्रकार के कीटों, 112 सूत्रकृमियों एवं 15 फफूंद जातियों के रोकथाम के लिए हैं। नीम से लगभग 80 रसायनों को निकाला जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों एवं अन्य औषधियों के उत्पाद में मुख्य रूप से होता है। नीम में उपस्थित कड़वे तत्व पत्ती, फल, बीज, गिरी, तेल एवं छाल में पाए जाते हैं। नीम से बने कीटनाशकों का उपयोग कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है। ये मधुमक्खियों एवं कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं करते हैं और सस्ते भी साबित होते हैं। पर्यावरण हितैषी ऐसे वृक्ष को आओ हम बढ़ावा दें, इसका संरक्षण संवर्धन करें और इसे लगाएं।
1: भाई बहनों होनी, अभी आप सुन रहे था वार्ता। वार्ता को विषय तो प्रकृति का अनुपम उपहार नीम। वार्ताकार थी सविता परसाई। ना अब जाने लेवा कृषि उपज से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। सोयाबीन भाव रहा न्यूनतम 4,000 रुपया से अधिकतम 7,430 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं भाव रहा न्यूनतम 2,150 रुपया से अधिकतम 2,461 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर भाव रहा न्यूनतम 6,100 रुपया से अधिकतम 7,881 रुपया प्रति क्विंटल। चना भाव रहा न्यूनतम 4,525 रुपया से अधिकतम 5,950 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग भाव रहा न्यूनतम 6,000 रुपया से अधिकतम 7,201 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का भाव रहा न्यूनतम 1,650 रुपया से अधिकतम 1,987 रुपया प्रति क्विंटल। न भाई बहनोनी, अब हम सुनी लेवा एक और निमाड़ी लोकगीत, जेख गायज हेमलता उपाध्याय न साथी न।

भाई बहनों इना निमाड़ी लोकगीत का बाद अब जानी लेवा मौसम को हाल न कृषि समाचार। आज सूर्योदय हुआ प्रातः 5:41 पर न सूर्यास्त हुआ शाम 7:02 पर। आज दिन को अधिकतम तापमान रहो 37 डिग्री सेल्सियस न रात को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। अब जानी लेवा समाचार। कृषि कल्याण विशेष सलाह देश की ऐसी जमीन जहाँ पानी नहीं टिकतो है वहाँ पर दलहन न तिलहन फसल की बोनी इना माह में की जा सकज। जो मक्का बाजरा लोबिया की जी फसल मार्च अप्रैल में बोयल छे ओकी कटाई अभी किसान भाई नख करी लेनू चाहिए। न एक अलावा मानसून आने से पहले खेत में जल निकास नाली बनाने को कार्य वर्षा जल जमीन का नलकूप या फिर बोरिंग में उतारने की व्यवस्था नहर नदी नाला तालाब न को गहरीकरण अरु साफ सफाई को कार्य भी अभी शुरू करी देनो चाहिए। तो भाई बहनों होनी ई तो था आज का कृषि समाचार न मौसम को हाल न अब कांता जोशी न साथी न को गायल सुनी लेवा एक और निमाड़ी लोकगीत।

भाई बहनों होनी, अब इनानी माड़ी लोकगीत का बात हम जानी लेवा। आज कार्यक्रम में पूछा गया प्रश्न को उत्तर। तो कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न करियो थो, खेत में खरपतवार को नियंत्रण क्यों आवश्यक छे? नहीं को उत्तर छे, खरपतवार फसल का मुकाबला अधिक तीव्रता से बढ़च न जमीन में उपलब्ध नमी पोषक तत्व को उपयोग तेजी से करच, एकासी फसल की बढ़तवार कम रह जायज न खेत में कुल पैदावार को 50-60% तक नुकसान खरपतवार से हुई जायज, एकालेन समय पर खरपतवार नियंत्रण विशेषकर फसल से 30-40 दिन पहले बहुत जरूरी छे। नैना प्रश्न का उत्तर का साथ अपनी बहन प्रणीता का कार्यक्रम समाप्त करने की दियो आज्ञा। राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
3: Namaskar, thank you.
2: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
3: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला। वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग। मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाए, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण।

0: यानी सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा, जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहां बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: For over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over at last 8 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be Annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इट अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters, because somewhere other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know.

0: Yes.
1: That is also the big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts.
0: Yes.
1: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
0: Right.
1: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
0: Yes. मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे. उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया. और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं. ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए. और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो. ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का. उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार. अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था,

0: लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से। वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए, और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो, द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is, like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries. Cost

0: nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है. और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है इस साल का